सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संबत 1948 की वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई महीने की 12 तारीख। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: वाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध

0: पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं सब्जी फसलों को कीड़ों से कैसे बचाएं। वाचन है अनीता तिर्की का।
2: सब्जी फसलों में बैंगन, गोभी जाति की फसलें, टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन, सेम, शिमला मिर्च, कद्दू इत्यादि प्रमुख सब्जियां हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। अतः अधिक उपज और अच्छी सब्जियों के लिए इन कीड़ों का नियंत्रण आवश्यक है। फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े पौधों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। इन कीड़ों का वर्गीकरण क्षति के आधार पर किया जा सकता है। पहला है मिट्टी में रहकर क्षति पहुंचाने वाले कीड़े, जैसे दीमक। दूसरा धड़ और फल छेदक कीड़े, जिसमें शीर्ष और फल छेदक, तना छेदक, फलित छेदक आदि आते हैं। एक है रस चूसने वाले कीड़े, जिसमें मधुआ, लाही, सफ़ेद मक्खी और लाल मकड़ी इत्यादि आते हैं। चौथा है पत्तियों के बीच बीच में रहकर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, जैसे पन सुरंगक। इन सभी कीड़ों से सब्जियों की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। शीर्ष और फल छेदक जब कीड़े आक्रमण करते हैं पौधे पर, तो इसके नवजात पिल्लू फल के कोमल शीर्ष भाग, फूल के बाह्य दल, छोटे छोटे फलों में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। फल बनने के समय पिल्लू फल में प्रवेश कर जाते हैं, इसके कारण फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसका आक्रमण भिंडी की फसल पर भी देखा गया है। मधुआ जो कीट है, इसका शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियां भूरी हो जाती है और बाद में सूख जाती है। इसका आक्रमण भी बैगन, भिंडी, फ्रेंच बीन इत्यादि की फसलों पर देखा जाता है, मधुआ जो कीट है। इसी तरह जो लाही है, इसके शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों, फूलों, कलियों, नवजात फलियों का रस चूस लेते हैं। इसका ज़्यादा प्रकोप जब हो जाएगा तो पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ जाती है, पत्तियाँ पीली हो जाती है, पौधों का बढ़वार रुक जाता है। इसका प्रकोप भी बैगन, भिंडी, सेम, गोभी इत्यादि की फसलों पर देखा गया है। इसी तरह लाल मकड़ी या माइट जो है, या मकड़ी जाति का जीव है, इसके शिशु और वयस्क दोनों ही फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसका भी आक्रमण बैगन, भिंडी इत्यादि की फसलों पर देखा गया है। श्वेत मक्खी जो है, इसका पंख सफ़ेद और चमकीला होता है, थोड़ी सी आहट पाकर ये उड़ने लग जाते हैं। इसके कीट और शिशु दोनों ही पत्तियों का रस चूसने लगते हैं, जिसके कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह कीट भिंडी में शिरा मोजाइक रोग फैलाता है। इसी तरह फली छेदक जो कीट है, इसका पिल्लू टमाटर की फलियों में छेद कर गुदा को खाने लगता है और उसमें सड़न रोग पैदा करता है। इस कीट का आक्रमण शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, फ्रेंच बीन इत्यादि पर होता है। इसी तरह जो गोभी का पतंगा है, ये भी आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके कीट भी काफ़ी तंग करते हैं फसलों को। पन जालक जो कीट है, इसके नवजात पिल्लू एक स्थान पर झुंड में रहते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इधर उधर बिखर जाते हैं। इन सभी कीड़ों के नियंत्रण के लिए कृषि क्रियाओं पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है कि खेत को हमेशा साफ सुथरी रखना है। कीड़ों द्वारा जो ग्रसित भाग है, जैसे पत्तियां, टहनियां या फल फूल, इसको चुनकर नष्ट कर देना है। शीर्ष या फल छेदक जो कीड़े हैं, इसके नियंत्रण के लिए एमैक्टिन बेंजोइड, एक बार फिर से सुन लें, शीर्ष और फल छेदक जो कीड़े हैं, इसके नियंत्रण के लिए एमैक्टिन बेंजोइड जो है, इसका 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। फल बनते समय नीमयुक्त कीटनाशी, जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% या अचूक या निमेरिन, इसका 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। टमाटर के जो फल छेदक कीड़े हैं, इसका नियंत्रण करने के लिए नुभालुरोन 10 EC एक दवा है, इसका 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। इसमें भी आप नीम से निर्मित कीटनाशी या बैक्टीरिया निर्मित कीटनाशी गोभी में लगने वाले कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, जैसे कि लाही, मधुआ, थ्रिप्स, इसके नियंत्रण

0: स्तन के लिए इमिडाक्लोरपिड एक दवा है। इसकी मात्रा होगी 1 मिलीलीटर। 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखा गया है। लाल मकड़ी जो है उसके नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल एक दवा है। इसकी मात्रा होगी 2.5 मिलीलीटर। 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, या ओमाइट जो है इसकी मात्रा होगी 2 मिलीलीटर। 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं।
1: सब्जी फसलों को कीड़ों से कैसे बचाएं, खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

0: जीवन में उपदेशों की अहम भूमिका होती है, उन्हें लेकर तमाम बहस भी जारी हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उपदेश सुनने वाले पहले जैसे नहीं रहे, या सुनाने वालों की वाणी में वो ओज नहीं है कि सुनने वालों का मन मस्तिष्क बदल जाए। ग्रंथों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, तो वक्ता श्रोता के बीच शब्द ब्रह्म आखिर क्यों निष्प्रभावी है? किसी धार्मिक आयोजन में वक्ता तो एक होता है, जबकि श्रोता अनेक होते हैं। अगर अच्छे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा, तो मतलब यही निकलता है कि सभी श्रोता अपात्र थे। फिर धार्मिक आयोजन का क्या औचित्य? उपदेशक तो इसी उद्देश्य से निकला है कि वो समाज बदल देगा। यदि वो नहीं बदल पाया, तो उसे भी सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहिए था कि वो अपने अभियान में असफल हो गया। लेकिन कोई भी उपदेशक ऐसा कहने को तैयार नहीं। दरअसल सदुपदेशों के बावजूद सदाचार का लगातार चीरहरण बढ़ रहा है, तो सबसे पहले अंगुली उपदेशक पर ही उठेगी। जमाने को दोष देते समय उपदेशक को अपना भी दोष देखना चाहिए। भारी भरकम कार्यक्रमों एवं जलसों का आयोजन प्रसिद्धि पाने के लिए होता जा रहा है। कोई उपदेशक अपना चरण स्पर्श करने वालों से ये नहीं पूछता कि चरण स्पर्श करने वाला अपने माता पिता की सेवा करता है या नहीं। यदि नहीं, तो वो उपदेश सुनने के योग्य नहीं, और वो उपदेश स्थल से तत्काल उठकर चला जाए। हो ये रहा है कि उपदेशों के नाम पर किसी व्यापारी की तरह अपने उपदेश उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई उपदेशक ये कहते नहीं देखा जाता कि उसे पैसा देने के बजाय किसी गरीब के इलाज, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा, किसी वस्त्रहीन को तन ढकने के लिए पैसा खर्च किया जाए। कहते भी हैं तो वो सीधे नहीं, बल्कि उपदेशक के माध्यम से ही किया जाए। अब यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, धन संग्रह शुरू हो जाता है। अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रचार तंत्र और अन्य माध्यमों की मदद से वे सारे काम शुरू करने लगते हैं, जो व्यक्ति को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि उसकी वाणी को भी कमजोर बनाते हैं। फिर ऐसे लोगों की बात का समाज पर असर पड़ेगा, ये संभव ही नहीं। उपदेश देने वालों को चाहिए कि वो पहले अपना आचरण सुधारें, फिर किसी को सुधारने के लिए सोचें।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत, एक ऐसा गीत जो केवल शुरू में ही नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी की खुशबू, वीरों के बलिदान और राष्ट्रप्रेम की भावना से भी ओतप्रोत है। भारत अपनी विविधता, संस्कृति, परंपरा और गौरव के साथ आंखों के सामने जीवंत हो उठता है इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है अनूप जलोटा ने।

आप सुन रहे थे प्रदीप की रचना अनूप जलोटा का गाया हुआ, और आइए सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

माँ शक्ति और गणपति वंदना का सुंदर संगम अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं माँ दरबार की अटूट आस्था और कृपा को समर्पित यह भावपूर्ण भजन जो मन को श्रद्धा से भर देता है। स्वर है लता मंगेशकर का।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं माँ जगदम्बा को समर्पित आरती, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

माँ जगदम्बा को समर्पित आरती आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना थी पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। इसके साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

सुनेंगे शाम 6:02 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा फसल बीमा योजना पर। आज की बात में आपको जानकारी मिलेगी मिट्टी की जान हरी खाद, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्तीति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्डदेशं सम्प्राप्स्यति। सप्तदशाधिकद्विसहस्रतमे वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्डदेशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडनदेशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडनदेशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धीषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगरपालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंट वार्ता गुर्दा रोग के कारण लक्षण और उपचार विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर शालिनी प्रिया, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों आज के समय में देखा जा रहा है कि हमारे युवा साथी किडनी की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। गुर्दा रोग कॉमन होता जा रहा है, क्या कारण है? पहले ये बीमारी बड़े बुजुर्गों को हुआ करता था, लेकिन आज के बदलती जीवन शैली में हमारे यंग जनरेशन के लोग इस गुर्दे की बीमारी से परेशान हो रहे हैं, ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है कि ये बीमारी उन तक पहुंच रही है? उनका रहन सहन कैसा है और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार हम व्यवस्थित करें कि गुर्दा रोग हमें हो ही नहीं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर शालिनी प्रिया। आप गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं और किड हॉस्पिटल रांची में। मैडम स्वागत है आपका। आजकल देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का किडनी की बीमारी से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, क्या कारण है इसका?
5: नमस्कार आप सभी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि किडनी की बीमारी आज से एक दशक पहले 50-60 के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनमें ज़्यादा कॉमन थी, पर आजकल जो युवा वर्ग है उनकी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस इतने हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से हमारे हॉर्मोन्स में इतने चेंजेस आते हैं कि जो बीमारियां आज 50-60 में होनी चाहिए, जैसे कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारी बीमारियां युवा वर्ग में ज़्यादा कॉमन हो रही हैं और इस वजह से किडनी जो है ग्रसित हो रही हैं उच्च रक्तचाप की वजह से। दूसरा जो कारण है वो है कि आजकल हर चीज़ में मिलावट हो गई है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है हमारे रोज़ के फल सब्जियों में और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं जिसकी वजह से केमिकल के एक्सपोजर ज़्यादा होने लगे हैं जिसकी वजह से किडनी का नुकसान होता है। और तीसरा है काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक बीमारियां बढ़ गई हैं ये युवा वर्ग में, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब इन सारी मिलावट वाली चीज़ों से एक्सपोजर होता है तो जो हमारा जेनेटिक संरचना होता है जो हमारी किडनी को गर्भ के दौरान बनने में मदद करता है उसमें काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से युवा वर्ग में या तो किडनी बन नहीं पाती और अगर बनती है तो वो ठीक से नहीं बन पाती है जिसकी वजह से वो आगे जा करके किडनी की बीमारी में परिवर्तित हो जाती है।
4: हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, बदलती जीवन शैली, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह की बीमारी, ये इस बीमारी का जड़ है, इस कारण बीमारी हो जाती है गुर्दे की।
5: जी बिल्कुल।
4: इस बीमारी का शुरुआती लक्षण है वो हमें क्या दिखता है ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और हम एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू करें?
5: किडनी की बीमारी के प्राथमिक लक्षण जो होते हैं वो पेशाब से होती है। पेशाब में या तो झाग आएगा, पेशाब कम होने लगेगा, पेशाब में जलन होगी और दूसरा जो महत्वपूर्ण एक सिम्टम है वो है पाँव का सूजन। पाँव में सूजन आएगा, चेहरे पे सूजन आएगा, आँखों के नीचे फूलना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम रहता है।
4: आजकल लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह से ग्रसित है तो ये कितना हद तक जिम्मेदार है, या जिसे गुर्दे की बीमारी है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है?
5: जी बिल्कुल। देखिए ये दोनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर उच्च रक्तचाप रहे, हाई ब्लड प्रेशर, ये किडनी की बीमारी कर सकता है और किडनी की बीमारी का एक सिम्टम आगे चल करके हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में लिंक्ड रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपना मॉनिटरिंग करते रहें, क्लिनिकल चेकअप हर 3 महीने पे करते रहें, ब्लड प्रेशर का चेक मॉनिटरिंग करते रहें, ब्लड शुगर चेक करते रहें और जहां भी लगे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर जो है वो खराब हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, तो तुरंत उसको रोक करके हम किडनी की बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
4: कोई व्यक्ति जिसे सामान्य ब्लड प्रेशर है, उसे मधुमेह की बीमारी नहीं है, वो एक स्वस्थ जीवन यापन करता है, तो कितना संभावना है कि वो गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हो?
5: इसमें बहुत कम चांसेस रहेंगे, वो मेनली उनके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। अगर उनकी नींद पूरी नहीं हो रही हो, अगर स्ट्रेस में नहीं हो वो, तो फिर किडनी की बीमारी आगे चल के होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कि दर्द की दवाइयाँ जो हम यूजुअली बिना सोचे समझे दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर पानी अगर हम कम पिएं, इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होकर के किडनी का नुकसान हो सकता है।
4: डॉक्टर शालिनी प्रिया, जब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें किडनी की बीमारी है, उपचार क्या है, कौन कौन से इसके टेस्ट की जाती हैं, जांचें किस प्रकार की जाती है और इसका इलाज कितना दिनों तक चलता है?
5: किडनी की बीमारी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अक्यूट किडनी इंजरी और एक होता है CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जो अक्यूट किडनी इंजरी होती है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही हो जाती है। तो इसमें जो कारण है, जैसे इन्फेक्शन हुआ या फिर किसी तरह की दवाइयाँ हुई, दर्द की दवाइयाँ हुई, इन सब चीज़ों को अगर हम ठीक करें तो किडनी की बीमारी अपने आप ही नॉर्मल हो सकती हैं। पर अगर किसी को CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाए तो इसमें टाइम लगता है, इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ये काफ़ी लंबा चल सकता है, किसी का 1 साल, किसी का 3 साल, वो हमें रेगुलर मॉनिटरिंग पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं। अब रही कि हम कैसे पता करें कि हमें किडनी की बीमारी है, तो इसके 2 सिंपल टेस्ट होते हैं, एक तो पेशाब की जांच होती है और दूसरी खून की जांच होती है। पेशाब की जांच में हम एक रूटीन पेशाब की जांच कर सकते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि पेशाब से कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है, खून तो नहीं आ रहा है हमारे पेशाब में, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशाब का। और दूसरा, एक डायबिटिक पेशेंट्स में हम यूरिन का एक एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कराते हैं जो कि बताता है हमारा कि प्रोटीन लीक कितना सिग्निफिकेंट है, कितना ज़्यादा है। और दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम एक तो यूरिया क्रिएटिनिन की जांच करते हैं जो कि हमारे किडनी का फिल्ट्रेशन बताता है, हमें बताता है कि खून की सफाई जो हो रही है वो ठीक से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये 2 सिंपल टेस्ट से हम किडनी की बीमारी को बहुत जल्द पकड़ सकते हैं।
4: जी डॉक्टर शालिनी प्रिया, ये बीमारी हम तक हो नहीं, आजकल की बदलती जीवन शैली में खान पान बहुत बिगड़ गया है हमारा, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्या सावधानियां रखा जाए, किन चीज़ों से परहेज किया जाए, कौन सी खाद्य पदार्थों से हम दूरियां बनाएं और कौन कौन चीज़ों का हम सेवन करें ताकि ये बीमारी हम तक नहीं हो और हम एक स्वस्थ जीवन यापन करें?
5: सबसे महत्वपूर्ण है अपनी किडनी को बचा के रखने के लिए कि हम पानी का सेवन अत्यधिक करें। नॉर्मल इंसानों के लिए हम कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप डेली पिएं, पर जिनको शुगर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और अगर उनको पाँव में सूजन आता जाता रहता है तो वो कम से कम 1.5 लीटर पानी का सेवन कम से कम करें दिन भर में, अन्यथा अगर उनको कुछ और बताया ना गया हो इससे पहले तो। दूसरा है नमक का सेवन। हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई कि हम बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने लगे हैं, जो पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अचार हुआ, पापड़ हुआ, तो ये सारी चीज़ों का हम सेवन ना ही करें तो अच्छा है। और ये स्पेशली जो उनको ब्लड प्रेशर है उन लोगों को हम मना करते हैं ये सारे कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाली चीज़ों को खाने के लिए। तीसरा है कि हम फल सब्जियों का सेवन अत्यधिक करें। चौथा है, अपनी मर्जी से कोई भी दर्द की दवाई या कोई भी दवाई का सेवन बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना करें।
4: जो हमारी खान पान बिगड़ गई है, जैसे फास्ट फूड हम ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खाने लग जाते हैं, चटपटी चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा
5: रही है। जी बिल्कुल।
4: इस न्यू जनरेशन को आप क्या कहेंगे?
5: न्यू जनरेशन को मुझे यही कहना है कि वो अपनी सेहत पे ध्यान दें। किडनी की बीमारी जो होती है वो हम फर्स्ट स्टेप पे ही रोक सकते हैं अगर हम अपने आप को, जो ये पैकेज प्रोडक्ट है, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ों से अगर हम अपने आप को दूर रखें तो किडनी की बीमारी से हम खुद को बचा सकते हैं। मेरा यंगर जनरेशन को यही सुझाव रहेगा कि वो जितना स्ट्रेस फ्री रह सके और अपने खान पान में जितना बदलाव ला सके, स्वस्थ खाना खाएं, घर का खाना खाएं, उतना ही वो किडनी की बीमारी से दूर रह पाएंगे।
4: जी, स्वस्थ जीवन यापन करते हैं, घर का बनाया हुआ खाना खाते हैं और एक बढ़िया जीवन शैली यदि आपकी रहती है, तनाव से आप दूरियां बनाते हैं और जो आजकल जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, मधुमेह या ब्लड प्रेशर है, इससे आप अपना बचाव कर लेते हैं तो फिर किडनी की बीमारी आप तक नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी प्रिया, गुर्दा रोग विशेषज्ञ और किड हॉस्पिटल रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता गुर्दा रोग के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर शालिनी प्रिया, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह सुरीली के लिए बस थोड़ा इंतजार।

ख्वाबों की वादी में जब प्यार उतर आता है, हर मौसम जैसे कोई गीत गुनगुनाता है। चांदनी भी थमकर सुनती है दिल की धड़कन, जब कोई अपना खामोशी से मुस्कुराता है। आइए सुनते हैं सबसे पहले फिल्म सिलसिला का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है शिवहरी ने, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का।

जीने की राह, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर मोहम्मद रफी का। किसी के आने से यूं बदल जाती है जिंदगी, सूनी राहों में भी खिल उठती है बंदगी। हर तरफ महकने लगते हैं चाहत के गुल, दिल कह उठता है यही है असली खुशी।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: जिंदगी का सफर भी कितना सुहाना लगता है जब हर पल कोई अपना साथ साथ चलता है। गीत बन जाए राहें, मुस्कान बन जाए मंजिल, तब हर धड़कन खुशी का तराना सा लगता है। आइए सुनते हैं फिल्म गाइड का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है HD बर्मन ने, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का, स्वर येसुदास का। छोटी छोटी बातों में भी उजाला ढूंढ लीजिए, हर रिश्ते में प्यार का प्याला ढूंढ लीजिए, जिंदगी खुद मुस्कुराने लगेगी एक दिन, बस दिल में खुशियों का हवाला ढूंढ लीजिए। आइए सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पियामन भावे का ये गीत।

येसुदास और हेमलता के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म चिराग का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। तेरी आंखों में जैसे पूरा जहां बसता है, हर सपना वहीं जाकर चुपके से सजता है। मोहब्बत की यही सबसे हंसी पहचान है, दिल किसी एक चेहरे में उम्र भर धड़कता है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म चिराग के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का सुबह सुरीली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम सुनेंगे अब से बस थोड़ी देर में।

0: आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं वार्ता। झारखंड के कथा पुरुष वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रशांत गौरव।
1: झारखंड में कथा लेखन की सुदीर्घ परंपरा रही है। यहां का कथा परिदृश्य लगभग 8 दशकों में फैला है। आज भी समकालीन हिंदी कथा साहित्य में कथाकारों की एक बड़ी संख्या सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह उपस्थिति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर प्रभावपूर्ण है। झारखंड में हिंदी लेखकों के 3 वर्ग हैं। पहले वर्ग में ऐसे लेखक सम्मिलित हैं जिनकी जन्मभूमि इसी अंचल में। दूसरा वर्ग उन हिंदी लेखकों का है जिनकी कर्म भूमि झारखंड है। और तीसरे वर्ग में प्रवासी लेखकों की बड़ी संख्या है जिन्होंने कम या अधिक समय यहाँ बिताया और अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्रीय इतिहास लेखन में तीनों श्रेणियों के साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका रही है। झारखंड का हिंदी कथा परिदृश्य अनेक कथाकारों की उपलब्धियों का इतिहास है। इन कथाकारों में प्रेमचंद युग के राधा कृष्ण से लेकर हिंदी के नवीनतम कथाकारों तक की चर्चा की जा सकती है। राधा कृष्ण को झारखंड का पहला विशिष्ट और समर्पित कथाकार कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में जो सम्मान प्रेमचंद को प्राप्त है वही सम्मान राधा कृष्ण को झारखंड के हिंदी साहित्य में प्राप्त है। अपनी सहज, संप्रेषणीय और विशिष्ट कथा भंगिमा के साथ किस्सागोई की विलक्षण क्षमता के कारण वे अपने समय में चर्चित, प्रशंसित रहे थे। उनकी पहली कहानी सिन्हा साहब अप्रैल 1929 में हंस में प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल, आहत है। वहीं उपन्यासों में फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने आदि प्रमुख हैं। राधा कृष्ण ने विपुल साहित्य का सृजन किया है लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अधिकांश रचनाएं आज भी अप्रकाशित हैं। राधा कृष्ण के बाद झारखंड में कथाकारों की लंबी कतार बनती चली गई। 1917 ईस्वी में लोहरदगा जिले में जन्मे द्वारिका प्रसाद का लेखन 1948 से 78 के बीच 3 दशकों में सिमटा हुआ है। द्वारिका प्रसाद झारखंड के पहले नियमित उपन्यासकार के साथ ही हिंदी में व्यक्तिगत निबंधों के जन्मदाता भी हैं। कहानी उपन्यासों के अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा यौन विज्ञान संबंधी रचनाएं भी लिखी है। इनके उपन्यासों में अंकुश, पहिए, भटका साथी, स्वयं सेवक, अनामी, कांता, घेरे के बाहर प्रमुख है। अपने समय में घेरे के बाहर काफी विवादास्पद रही। इनकी 2 कहानी संग्रह परियों की कहानियां, शेर का शिकार प्रकाशित हो चुका है। कथाकारों के इसी क्रम में 1 नवंबर 1905 को भोजपुर जिले के पवार गांव में जन्मे योगेंद्रनाथ सिन्हा, जिनकी कर्म भूमि झारखंड रही, यहां वन विभाग के सर्वोच्च पद मुख्य वन संरक्षक के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। उनकी रचनाओं में वन के मन की निश्चल आत्मीयता, वन का पावन जादू पूरे सम्मोहन के साथ खुलता है। पहाड़ की पुकार, दुम्भी हो, मूछ की लड़ाई, चलो बादलों में छिप जाएं, खोया कंगन, आसमान तारा इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। वहीं वन लक्ष्मी वन के मन में प्रसिद्ध उपन्यास है। कथाकारों के इस कतार में जमशेदपुर के गुरुवचन सिंह, जिनके युग और देवता, नीम की निबोलियां, धरती के बेटे, एक और निवेदन, बुझी हुई राख, आसमान दूर है, हे अरण्य कुछ कहो, मोतियाबिंद आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वन पाखी, रेखाएं और पंजाब की त्रासदी पर केंद्रित सभे घर राम बोले महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रवण कुमार गोस्वामी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम व्यंग कथाकारों में से एक हैं। उनकी रचनात्मक प्रतिभा विलक्षण है। मनोविश्लेषण की गहन क्षमता, सूक्ष्म सौंदर्य बोध एवं कला के प्रति ईमानदारी एवं समर्पण का भाव उन्हें अन्य कथा लेखकों से अलग साबित करता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के यथार्थ की आलोचना व्यंग के माध्यम से की है। देश में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद, अशिक्षा, गलत शिक्षा प्रणाली, गिरते मूल्य को अपने उपन्यासों से उभारा है। उनका संपूर्ण औपन्यासिक लेखन मानव मूल्यों और आदर्शों को समर्पित है। उनके प्रत्येक उपन्यास में कोई न कोई पात्र ऐसा है जो विषम परिस्थितियों को झेलता हुआ भी अपने लिए साहसपूर्ण मार्ग चुनता है और अपनी अलग पहचान निर्मित करता है। इनके उपन्यासों में जंगल तंत्रम, जिसे 1980 में झारखंड का प्रसिद्ध राधा कृष्ण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ ना बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, एक टुकड़ा सच, आदमखोर प्रमुख हैं। जिस दिए में तेल नहीं एकमात्र कहानी संग्रह है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनकी पहली कहानी बॉडम 1961 में धर्मयुग में प्रकाशित, साल वन का आखिरी पेड़ उनका प्रमुख कहानी संग्रह है, वहीं जंगल उपन्यास है। सन 1958 में गया से रांची आए विद्याभूषण एक साथ कथाकार और समीक्षक भी हैं। 1963-64 तक आते आते उनकी स्तरीय कहानियां देश भर के शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उनकी अब तक चार कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें कोरस, कोरस वाली गली, नायाब नर्सरी प्रमुख है। टाटा स्टील से सेवानिवृत्त जयनंदन समकालीन हिंदी कथाकारों के बीच खासे चर्चित है। इनके कहानी लेखन की विशिष्टता के कारण भारतीय ज्ञानपीठ का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां और अंतर्विरोधों की झलक मिलती है। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानोवत्स, दाल नहीं गलेगी अब, घर फूक तमाशा, गुहार, गांव की सिसकियां, भीतर घात इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। श्रम एवं जयते, ऐसी नगरिया में केही विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों इनके उपन्यास हैं। पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को अपने उपन्यास में नए ढंग से प्रस्तुत कर पूरे वैश्विक फलक पर हिंदी की गरिमा को विशेष पहचान दिलाने वाले नरेंद्र कोहली जनप्रिय रचनाकार रहे हैं। भारत विभाजन के पश्चात सियालकोट अब पाकिस्तान से जमशेदपुर आए नरेंद्र कोहली रांची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रतिष्ठा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्नातक रहे हैं। पुनरारंभ, आतंक, साथ सहा गया दुख, दीक्षा, महासमर, तोड़ो कारा तोड़ो, वसुदेव, पूत अनोखे जाए इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टिदेश में एकाएक, सटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वासुदेव की पिछले तीन दशकों में लगभग 100 से अधिक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी है। उनकी 14 कहानियों का संकलन इस जंगल के लोग 1993 में प्रकाशित हुआ। इसकी पांडुलिपि को बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा युवा लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। इन कथाकारों में सी भास्कर राव की विशिष्टता आज भी बनी हुई है। मूलतः तेलुगु भाषी सी भास्कर राव ने हिंदी साहित्य के श्री

0: पर्यटकों के हृदय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पलामू रोहतास की सीमा पर स्थित उरांव बस्तियों की संघर्ष कथा का बड़ा सजीव चित्रण मनमोहन पाठक ने किया है। भारत के मानचित्र के बाहर जहां तक हिंदी भाषा और साहित्य पहुंची है, रणेंद्र के उपन्यासों की गूंज वहां तक है। पेशे से प्रशासनिक अधिकारी होते हुए रणेंद्र ने साहित्य की जो अभूतपूर्व सेवा की, उसकी मिसाल दुर्लभ है। रणेंद्र की रुचि हाशिए के समाज की अस्मिता से जुड़े सवालों को सामने लाने तथा उन समस्याओं पर बहस कर उसका समाधान प्रस्तुत करना रहा है। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस उनका चर्चित उपन्यास है। रात, बाकी एवं अन्य कहानियां 56 छुरी 72 पेंच प्रमुख कहानी संग्रह है। 1990 के बाद हिंदी कथा साहित्य में एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ। पंकज मित्र इसी नई पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 52 कहानियां संकलित हैं। अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि अर्जित किए पंकज मित्र देश भर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। इंडिया टुडे का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में गांव और शहर के बीच बसे कस्बाई जीवन का चित्रण मिलता है। पंकज मित्र के कहानियों के प्राण तत्व हैं उसकी व्यंग भाषा। इनका व्यंग फलक बहुत विस्तृत है। जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विसंगतियों को सुंदर अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। क्विज मास्टर, हुड़ुक लुल्लू, जिद्दी रेडियो, बसिंदा एट द रेट ऑफ तीसरी दुनिया, अच्छा आदमी, एक हंसोड़ का हलफनामा इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। बाद की पीढ़ी में प्रियदर्शन, नीरज नीर, मृत्युंजय कोइरी आदि युवा कथाकार सक्रिय हुए हैं। प्रियदर्शन का एकमात्र उपन्यास जिंदगी लाइफ काफी प्रशंसित रहा। वहीं अब तक उनके 2 कहानी संग्रह उसके हिस्से का जादू, बारिश, धुआं और दोस्त पाठकों को प्रभावित करता है। 1973 में जन्मे नीरज नीर का एकमात्र कथा संकलन ढुकनी एवं अन्य कहानियां पाठकों में खासा लोकप्रिय है। 3 फरवरी 1992 को रांची जिले से 80 किलोमीटर दूर सोनाहातू के चोगा ग्राम में जन्मे मृत्युंजय कोइरी की आत्मा गांव में बसती है। उनकी कहानियों में ग्रामीण व शहरी आम जनजीवन के दुख दर्द, लाचारी, विवशता व उच्च वर्ग की संवेदनहीनता के चित्रण मिलते हैं। झारखंड के नए कहानी लेखकों में मृत्युंजय अकेले कहानीकार हैं जो किसानी जीवन को केंद्र में रखकर लेखन कर रहे हैं। कम समय में ही विशिष्ट कहानीकारों के फहरिस्त में शामिल मृत्युंजय के प्याज के आंसू और 100 यात्रा कहानी का क्रमशः बंगला और मलयालम में अनुवाद हो चुका है। मेड़, राजेश की बैलगाड़ी, एक बोझा दान, चयनित कहानियां मृत्युंजय कोइरी प्रमुख कहानी संग्रह है। तपस्या, अंतर्मन के सब, गैरत, विवस्ता आदि इनका साझा कहानी संकलन है। इन सभी पुरुष कथाकारों ने मिलकर यह स्थापित किया कि कथा साहित्य आज जीवन के सर्वांग स्वरूप को प्रस्तुत करता है।
1: झारखंड के कथा पुरुष खुला आकाश कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रशांत गौरव की वार्ता। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केन्द्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
9: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
10: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
11: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ

0: भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगें मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही

0: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL following threats from extremist group. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials and journalists travelling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Navasingh Parmar, Akashwani News, Dhaka.
1: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Skipper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scalped 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. Thunderstorms and lightning are likely to prevail over Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, coastal Andhra Pradesh, Karnataka and the northeastern states today. The IMD has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. There is possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
2: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says, rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGE and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani Sipi.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने और एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालोघाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का न करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक बार फिर ईंधन बचाने और कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
4: इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गई है। देश में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों और उनके अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करें। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। प्रदेश भाजपा ने कल धनबाद में बिजली पानी संकट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
6: बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता तराही तराही मांग कर रही है। आज ये घर में सब सूख रहा है भाई, पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में तराही तराही कर।
4: वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाएं घरों में रहने के बजाय घड़ा लेकर सड़क पर उतरने को विवश हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दिखाता है।
7: कहीं गांव देहात में चापाकल भी काम नहीं कर रहा और बिजली की हालत तो देख ही रहे हैं। धनबाद में 19 में यहां लगभग 900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी हुआ था, मैथन फेज 2 और फिर जामाडोवा, लेकिन जो योजना 22 में पूरा होना था वह योजना आज तक नहीं पूरा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, तो इसलिए सब प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: प्रदेश भाजपा ने झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख

0: कर कहा कि विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने, अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में रक्त से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के साथ जिलों में ब्लड सेवाओं को और सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में विरामचक दियाजोरी बलबड्डा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत 1,47,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री ने भुस्का पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने और पार्क निर्माण की योजना की जानकारी दी। राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल जमशेदपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यह एम्पोरियम 25,000 बुनकरों, 120 बुनकर समितियों और 220 कर्मियों की मेहनत, हुनर और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने के साथ स्थानीय शिल्पकारों को बाजार से जोड़ेगा।
1: सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री आनंद जी का, रोजगार का बढ़ापा मिलेगा। गांव घर देहात में 25,000 लोगों को अभी तक इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2,00,000-2,50,000 लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और ये इंपोर्ट भी होगा, बाहर भी विदेश भी जाएगा, तो इससे रोजगार को बढ़ापा मिलेगा।
0: चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पीएम कुसुम योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठाने के बाद गिद्धौर का चयन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मॉडल सोलर गांव के लिए किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि यहां के किसान अब खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं।
2: पीएम सूर्य घर योजना जो हम लोग को मिलने वाला है, इससे पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और ये गिद्धौर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत मध्य और पूर्वी झारखंड के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ईंधन बचाने, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की दोबारा की गई अपील को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। दैनिक भास्कर ने जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के शामिल नहीं होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने जमशेदपुर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 23 माह बाद जमानत मिलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का ना करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आपको बता दें रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे गूंजे झारखंड, जो कि केंद्रित होगा वन और पशु पक्षी पर। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आप सुनेंगे अविराम पाठक द्वारा राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकरंग।

आप सुन रहे थे रायसन उरांव और साथियों का गाया हुआ उरांव लोकगीत। इसके साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोक रंग संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रसरंजन।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के स्वर में। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की, संगीत था शिवहरि का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने, स्वर किशोर कुमार का।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

फिल्म मंजिल का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार का गाया हुआ, शब्द रचना थी योगेश की, संगीत था एचडी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरे सनम का ये गीत, आशा भोसले का गाया हुआ, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत ओपी नैयर का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
1: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
5: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म शोर से। शब्द रचना संतोष आनंद की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चितर का।
9: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्यामा का गाय इस फिल्म शोर के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं पंडित

मोर मुकुट केडिया का गाया हुआ सितार पर राग अहर भैरव में आलाप और जोर के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीजीत चैटर्जी।

तबले पर संगत कर रहे थे सृजीत चैटर्जी। इसके साथ संपन्न हुआ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:32 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी लू से बचाव पर। पसंद के लोकगीत भी आप सुन सकेंगे। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल के। जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:11 पर। आदिवासी अखाड़ा आप सुन सकेंगे खड़िया भाषा में शाम 7:15 पर। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे रजनीगंधा। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और आइए अब सुनते हैं क्रीड़ा जगत। प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का, प्रस्तुति स्वर अमिता खौरी का।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज चर्चा में सबसे पहले बात होगी आईपीएल की। इसमें 6 टीमें दौड़ में हैं प्लेऑफ की लड़ाई में। अब हर मैच निर्णायक साबित होगा, 50 से अधिक मैच हो चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में कुछ गजब का ट्रेंड हो रहा है, उस पर भी चर्चा होगी कि जो टीमें अच्छा क्षेत्र रक्षण कर रही हैं वो टीमें भी हार रही हैं। पर्सनालिटी में बात होगी जसप्रीत बुमराह की, आईपीएल में उनके परफॉर्मेंस की चर्चा होगी। आईपीएल अपडेट में सप्ताह के मैच होंगे, खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईपीएल की, जिसमें 6 टीमें अभी दौड़ पे हैं और प्लेऑफ की लड़ाई में हर मैच निर्णायक होगा। आईपीएल 2026 के लगभग 50 मैच पूरे हो चुके हैं और प्लेऑफ के लिए जंग अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बचे हुए 20 मैचों में 4 टीमों का फैसला होगा जो नॉकआउट

0: राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। हालांकि शानदार प्रदर्शन कर रही सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ के दावेदारों में शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद कम बची है, लेकिन अगर सभी मैच जीतने में सफल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो दावेदारी पेश कर सकती है। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का टॉप फोर में पहुंचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन टूर्नामेंट से अभी पूरी तरह से टीमें बाहर नहीं हैं। अब कुछ टीमों की हम चर्चा करें, जैसे सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सिर्फ एक जीत जरूरी है। सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में लगभग जगह मिल चुकी है, जगह उसकी पक्की हो गई है। अब अपने बाकी तीन मैचों में से सिर्फ एक जीत की उसे ज़रूरत है। टीम 16 अंकों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच सकती है। नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार है। 18 और 22 मई को CSK और RCB के साथ इसका मैच है। एक मैच भी जीत जाती है तो ये टॉप पे रहेगी। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इसे दो मैच में जीत की ज़रूरत है। राजस्थान रॉयल्स को भी प्लेऑफ में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए सिर्फ दो मैच चाहिए, जिसमें टीम 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। हालांकि टीम का प्रदर्शन इस सीजन में उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स को अपने नेट रन रेट को भी मजबूती से बनाए रखना होगा। 17 मई, 19 मई और 24 मई को दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के साथ ये इन टीमों के साथ इसकी भिड़ंत होगी, और इसमें दो मैच भी अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती है स्थिति बहुत अच्छी होगी। पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स को अपने बाकी चार मुकाबलों में कम से कम दो में जीत चाहिए, जिससे टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है और प्ले ऑफ लगभग तय हो जाएगा। हालांकि एक जीत के बाद भी उनके अच्छे नेट रन रेट से उन्हें फायदा मिल सकता है, लेकिन लगातार तीन हार ने टीम को थोड़ी परेशानी में डाला है। पंजाब किंग्स को जल्द फॉर्म में वापसी करनी होगी। 14 मई को मुंबई के साथ, आरसीबी के साथ 17 को और लखनऊ के साथ 23 मई को मुकाबला होगा और कम से कम दो मैच जीतने होंगे। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में सिर्फ चार टीमों के बराबर अंक पर है, लेकिन उसका नेट रन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी चार मैचों में कम से कम दो बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उसका नेट रन रेट सुधरे और राजस्थान रॉयल्स या ऊपर की चार अन्य टीमों में से किसी एक को पछाड़ सके। 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ और 21 मई को चेन्नई के साथ उसके मैच हैं और इसी में उसे सुधार की जरूरत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो आरसीबी को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए बाकी मैचों में से दो से तीन जीत की जरूरत है। टीम 16 से 18 अंकों तक पहुंच सकती है। उसका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों में से एक है, इसलिए 14 अंक पर भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। अगर बाकी नतीजे उसके पक्ष में गए तो आरसीबी शीर्ष में दो जगह बनाने में प्रबल दावेदार। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इसे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी चार मैचों में से कम तीन मैच जीतने होंगे। टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है। CSK का नेट रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है, जो कई टीमों के 14 और 16 अंक पर फंसने की स्थिति में अहम भूमिका अदा कर सकता है। चेन्नई ने अपने अंतिम मैचों में शानदार वापसी की है और अभी 15 मई, 18 मई और गुजरात के साथ 21 मई को, 15 को लखनऊ साथ, हैदराबाद के साथ 18 को और 21 मई को गुजरात के साथ मैच है, जिससे उसका नेट रन रेट और भी अच्छा हो सकता है। अब कुछ टीमें ऐसी हैं जो किस्मत के भरोसे चल रही हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी मैच जीतने होंगे और एक भी हार उसकी उम्मीदों को ख़त्म कर सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो KKR को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बाकी पांच मैच जीतने होंगे, जिससे टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है। हालांकि उनका खराब नेट रन रेट चिंता का विषय है। ऐसे में चार जीत के बाद 15 अंक भी शायद आए। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है, इसलिए टीम को सभी मैच जीतने होंगे। साथ ही यह भी उम्मीद करनी होगी कि 12 अंकों पर मौजूद बाकी टीमें अपने अधिकतर मुकाबले हार जाएं। यानी एक तरफ इनको जीत की गारंटी बनानी होगी और दूसरे तरफ देखना होगा कि दूसरी टीमें हार रही हैं। मुंबई का खराब रन रेट भी प्लेऑफ की उम्मीदों में बाधा बना हुआ है। और एक टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। टीम अगर अपने बाकी सभी 5 मैच जीत लेती है तो भी अधिकतम 14 अंक तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा उनका बेहद खराब रन रेट जो है वो 10 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन को लगभग नामुमकिन बना रहा है। तो ये विश्लेषण है दोस्तों। और जो बाकी 20 मैच बचे हैं इसमें 6 टीमें दौड़ में हैं और एक दूसरे के हार जीत पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीमें मजबूत स्थिति में और जिनको जितने मैच जीतने की ज़रूरत है उनको जीतना होगा, तभी वो टीम प्लेऑफ की लड़ाई में आगे आ सकती हैं। इस बार जो आईपीएल हो रहा है उसमें गजब का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्रिकेट में एक कहावत है कि कैच ही मैच जिताते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इस इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के दौरान कुछ अलग ही ट्रेंड सामने आ रहा है। जो टीमें अधिक मैच जीत रही हैं उनकी तुलना में हारने वाली टीमों की फील्डिंग बहुत अच्छी है। इस बार श्रेष्ठ फील्डरों में से एक विराट कोहली, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों के हाथों से गेंद ड्रॉप होती नजर आ रही हैं। आईपीएल 2026 सीजन में सबसे अधिक कैच पकड़ने की बात करें तो टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे आगे आता है। केकेआर ने 88.6% मौकों को भुनाया है, यानी कैच पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद टीम ने 9 मैच में से सिर्फ 3 में जीत दर्ज की है। अंक तालिका में शीर्ष पर कायम पंजाब किंग्स सबसे अधिक कैच पकड़ने वालों की सूची में 9वें नंबर पर है। अगर हम शुरू से देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने जितने भी मैच खेले उसमें 88.6 मौके ऐसे रहे जिसमें उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। क्षेत्र रक्षण उनका बहुत अच्छा रहा, इसके बावजूद टॉप टेबल में पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 87.2% मौकों को भुनाया है। बेंगलुरु ने 85.7, लखनऊ ने 83.7, गुजरात ने 80.5, चेन्नई ने 75.4, मुंबई ने 75, हैदराबाद ने 74.2, पंजाब ने 72.7 और दिल्ली ने 65.2 मौके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कैच पकड़े हैं। बावजूद इसके जो सबसे टॉप पे हैं टीम उन्होंने ही ज़्यादा कैच छोड़े हैं, बल्कि जो टीम सबसे नीचे है उन्होंने क्षेत्र रक्षण भी बहुत अच्छे किए, बावजूद उनके जीत का प्रतिशत काफी कम है। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और उनके सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए किसी पूरे सपने की तरह से गुजर रहा है। उन्होंने इस सीजन के 10 मैचों में से 109 से ज़्यादा की औसत से सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं। यह सीजन में 30 से अधिक ओवर फेंक चुके किसी गेंदबाज का सबसे खराब आंकड़ा है। घरेलू मैदान बानखेड़े स्टेडियम में तो बुमराह की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ उन्होंने अब तक 24 ओवर फेंके हैं, 241 रन देकर महज 1 विकेट उन्होंने लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुमराह के रहते हुए भी मुंबई के खिलाफ 244 रन चेज कर लिए। उस मैच में बुमराह ने 24 रन लुटाए और 5 छक्के खाए, जो 2021 के बाद उनका सबसे महंगा स्पेल था। वजह की बात करें तो वानखेड़े जो है वो चुनौती के रूप में है। बुमराह ने 37% ओवर तब डाले जब पिछले ओवर में 15 से अधिक रन बने थे। इस सीजन में वानखेड़े स्टेडियम गेंदबाजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ रन रेट 11.03 है और बाउंड्री का प्रतिशत 25.7 है। अब तक यहाँ खेली गई 12 पारियों में से 11 में स्कोर 195 के पार गया है, जो किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा है। 8 बार तो 220 से ज़्यादा रन बने हैं। ऐसी पिचों पर किसी भी गेंदबाज के लिए किफ़ायती रहना असंभव है और यही स्थिति बुमराह के साथ हो रही है। मुंबई इंडियंस का पेस अटैक इस बार सबसे कमजोर साबित हुआ है। नई गेंद के विशेषज्ञ ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने मिलकर 13 ओवरों में 170 रन लुटाकर सिर्फ एक विकेट लिया। जब दूसरे छोर से लगातार रन बरसते हैं तो रन रोकने और विकेट निकालने का सारा दबाव बुमराह पे आ जाता है और यही वजह है कि बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इस सीजन बुमराह का इस्तेमाल विकेट लेने वाले गेंदबाज के बजाय एक फायर फाइटर के रूप में किया गया। बुमराह ने जो ओवर फेंके हैं उनसे ठीक पहले ओवरों में दूसरे गेंदबाजों ने औसतन 12.57 के रन लुटाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 37% बार यानी 13 बार बुमराह को तब गेंदबाजी थमाई गई जब उसके ठीक पहले ओवर में 15 से ज़्यादा रन बने हैं। यानी जब भी टीम बुरी तरह से पिट रही होती है उस समय बुमराह को लगाया जाता है और वैसे स्थिति में बुमराह की भी पिटाई होती है। इस भारी दबाव का असर उनकी गेंदबाजी की लय पे साफ साफ दिख रहा है। उनकी औसत रफ्तार गिर कर 132.1 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। पहले जहाँ वह लगातार डॉट गेंद फेंककर बल्लेबाजों का दम घोटते थे, इस सीजन में वह औसतन 4 ओवर में सिर्फ एक बार 3 डॉट गेंद फेंक पाए हैं। भले ही बुमराह की इकोनॉमी रेट 8.89 है, लेकिन मुंबई के बाकी गेंदबाजों की इकोनॉमी 11.17 है। इसका सीधा मतलब है कि बुमराह अपनी टीम के बाकी गेंदबाजों के मुकाबले प्रति ओवर 2.28 रन कम दे रहे हैं। पूरे सीजन में अपनी टीम के अन्य गेंदबाजों की तुलना में इनका बड़ा सकारात्मक अंतर केकेआर के नरेन का ही है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों बुमराह का परफॉर्मेंस इस बार आईपीएल में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल अपडेट में इस सप्ताह हुए कुछ खास मैचों की चर्चा करेंगे। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में अपना सबसे बड़ा रन चेज करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। यह उसकी लगातार 3 हार के बाद तीसरी जीत रही। लखनऊ ने सीजन में पहली बार 200 से अधिक का स्कोर बनाते हुए मुंबई को 229 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई ने सिर्फ 18.4 ओवर में ही मुकाबला जीत लिया। लखनऊ को सीजन की 7वीं और लगातार 6ठी हार झेलनी पड़ी। इस हार ने लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया, क्योंकि अब शेष 5 मैच जीतने के बावजूद टीम 14 अंक तक पहुँच सकेगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रोहित और प्लेयर ऑफ द मैच रिकेल्टन ने तेज शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए। तिलक और सूर्या के फेल होने के बाद नमन धीर और जैक्स ने 8 गेंदे शेष रहते हुए मुंबई को लक्ष्य तक पहुंचाया। निकोलस पूरन और मिचेल मार्स के बीच 35 गेंदों में हुई 94 रनों की तूफानी साझेदारी के दम पर लखनऊ ने पारी की धमाकेदार शुरुआत की थी। शुरुआती 10 ओवर में टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 141 था, जो इस फेज में लीग के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि पारी के दूसरे हाफ में टीम तेजी से रन जुटाने में नाकाम रही। एडन मार्करम और हिम्मत सिंह की जोड़ी 49 गेंदों महज 68 रन ही जोड़ सकी। इसके चलते लखनऊ अच्छी शुरुआत के बावजूद 250 के आंकड़े तक नहीं पहुँच सकी। आईपीएल के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया और इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर आ गई। उसने पंजाब को दूसरे स्थान पर खिसका दिया। घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 235 का स्कोर बनाया। जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी, टीम वहीं ठहर गई। हैदराबाद ने रिकॉर्ड 11वीं बार 220 से अधिक का लक्ष्य बचाया। हैदराबाद ने जब भी 220 से ज़्यादा रन बनाए हर बार जीत पक्की रही। इसके साथ ही हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9वीं जीत दर्ज कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला। एक वेन्यू पर किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा लगातार मैच जीतने के मामले में अब हैदराबाद की टीम शीर्ष पर पहुंच गई। बुधवार को हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ 4 विकेट खोकर 235 रनों का अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ओपनर अभिषेक शर्मा 35, ट्रेविस हेड ने 38 रन बनाए और उन्होंने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़ दिए। इस स्कोर पर अभिषेक व 84 के स्कोर पर हेड आउट हुए। फिर ईशान और क्लासेन के बीच तीसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 88 रन की साझेदारी हुई। फिर क्लासेन ने रेड्डी के साथ 63 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब खराब शुरुआत से उबर नहीं सकी। उसकी ओर से सिर्फ कोनाली ने 59 गेंदों में 107 रनों की बड़ी पारी खेली। 22 साल 257 दिन के कोनाली लीग इतिहास में सबसे युवा विदेशी शतक वीर बन गए। हैदराबाद के कप्तान कमिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा पंजाब की खराब फील्डिंग। हैदराबाद की बैटिंग पिच पर पंजाब ने 3 कैच ड्रॉप किए। ईशान को महज 9 रन पर जीवनदान मिला और फिर 18 रन पर उनका दूसरा कैच टपकाया गया। एक बार कोनोली और दूसरी बार फर्ग्यूसन ने उन्हें जीवन दान दिया। क्लासेन जब 9 रन के निजी स्कोर पर थे तब शशांक ने उनका कैच ड्रॉप किया। विकेटकीपर प्रभ सिमरन ने ईशान की एक सरल स्टंपिंग का मौका भी गंवा दिया। अगर पंजाब ये कैच पकड़ लेती तो हैदराबाद 200 रनों के भीतर ही सिमट सकती थी। जीवन दान मिलने के बाद क्लासेन और किशन ने 50 जड़े। तो टर्निंग पॉइंट ये रहा, लगातार कैच छूटने की वजह से भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब खेल जगत की कुछ खास खबरें। नॉर्थ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम इस महीने के आखिर में मैच खेलने के लिए साउथ कोरिया जाएगी। साउथ कोरिया के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। 20 मई को टीमें आएंगी। यहां उनका मुकाबला एएफसी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में घरेलू टीम सुवन एफसी से होगा। अगर नॉर्थ कोरिया इस मैच से पीछे हटता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लगेगा। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं, दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते जो हैं उसे ठीक करने की पहल है। एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारतीय दल के लिए ऐतिहासिक साबित हो रही है। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने 27 मेडल पक्के कर लिए हैं। अंडर 15 गर्ल्स टीम ने अपने शानदार खेल से संभावित 15 में से 14 मेडल सुरक्षित कर लिए हैं। वहीं अंडर 15 बॉयज टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 15 में से 13 मेडल पर कब्जा जमाया है। दोनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने कई मुकाबले रेफरी स्टैम्प्स कॉन्टेस्ट के आधार पर जीते। सास्था बसंत, अशोक कुमार और प्रशांत ने यूएई के मोहम्मद अल बनाई और मायद अल यामी को पहले राउंड में मात दी है। महिला अंडर 18 हॉकी टीम एशिया कप की तैयारियों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 से 20 मई तक यहां 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज इस महीने के आखिर में जापान के काका मिगाहारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप की तैयारी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों टीमों के लिए यहां भारतीय खेल प्राधिकरण साई के केंद्र में 19 अप्रैल से अभ्यास शिविर लगाया गया था। पुरुष टीम के कोच सरदार सिंह ने कहा कि इस शिविर के दौरान मुख्य ध्यान सभी विभागों में खिलाड़ियों के बुनियादी कौशल और क्षमता को मजबूत करने पर रहा ताकि वे आधुनिक हॉकी की जरूरतों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीम के खिलाफ मैच हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला टीम की कोच रानी रामपाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीम के खिलाफ मैच खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर पर खेलने और अंडर 18 एशिया कप की तैयारी करने का शानदार मौका होगा। भारत को मंगलवार को यहाँ AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जापान की मजबूत टीम के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले हाफ में कोई गोल नहीं खाया, लेकिन दूसरे हाफ में जापान की टीम पूरी तरह से हावी रही और 3 गोल करके जीत दर्ज करने में सफल रही। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद मैच का 1 घंटा पूरा होने से ठीक पहले योमी हयासी ने जापान को बढ़त दिला दी। फिर युहा इकेदा ने 2 गोल करके 4 बार की चैंपियन टीम को ग्रुप बी में दूसरी जीत दिला दी। पूर्व विश्व चैंपियन ओजस देवताले ने भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का नेतृत्व करते हुए मंगलवार को यहां तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के क्वालिफाइंग राउंड में व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष 10 में जगह पक्की की। बर्लिन में 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतकर भारत के पहले पुरुष विश्व चैंपियन बने देवताले ने यहां क्वालिफाइंग में भारतीय खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 711 अंक हासिल करके कुल मिलाकर 7वां स्थान हासिल किया। इससे भारतीय टीम को भी फायदा हुआ और वह शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल रही। साहिल जाधव ने भी 711 अंक बनाए, लेकिन केंद्र पर सर्वाधिक निशाना लगाने के कारण देवताले उनसे आगे रहे। भारतीय टीम के एक अन्य खिलाड़ी कुशल दलाल ने कुल मिलाकर 18वें स्थान पर रहकर इस तिकड़ी को पूरा किया। इस तरह से भारत ने टीम स्पर्धा में 3रा स्थान हासिल किया। हालांकि एशियाई खेलों के पदक विजेता अभिषेक वर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह 705 अंकों के साथ 25वें स्थान पर खिसक गए, जिससे उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन वह व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में पूर्व चैंपियन अदिति स्वामी 700 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रही। वह क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहने वाली अमेरिका की एलिक्स रोई से 7 अंक पीछे रही। भारत के अन्य खिलाड़ियों में प्रगति 697 अंकों के साथ 19वें स्थान पर रही, जबकि कई बार विश्व कप जीत चुकी ज्योति सुरेखा वेन्नम 21वें स्थान पर खिसक गई। और अब कुछ स्थानीय खबरें। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 से 20 मई तक होने वाली घरेलू सीरीज के लिए 24 सदस्यीय अंडर 18 पुरुष और महिला टीमें घोषित कर दी हैं। महिला टीम में झारखंड की 6 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। महिला टीम में संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो, सुगन सांगा और सूती कुमारी ने जगह बनाई। वहीं पुरुष टीम में आशीष तानीपूर्ति और जैसन कंडुलुना को शामिल किया गया। महिला टीम में शामिल खिलाड़ियों में 2 सिमडेगा की, 3 बरियातू हॉकी सेंटर और 1 रांची एक क्लब सेंटर की है। वहीं पुरुष टीम में शामिल दोनों खिलाड़ी खुट्टी के हैं। 4 मैचों की सीरीज भोपाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र पर खेली जाएगी और यह जापान के काकामिंगहारा में 29 मई से 6 जून तक होने वाले पुरुष और महिला अंडर 18 एशियाई कप की तैयारियों के लिए बहुत ही अहम है। टीम का चयन राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के दौरान किया गया, जिसमें 42 खिलाड़ियों के समूह में से मैच फिटनेस और तकनीकी कौशल के आधार पर 24 लोगों को चुना गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित होने वाली स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड को ग्रुप ए में मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ रखा गया है। झारखंड टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 मई को मेघालय के साथ उसने कर दी। इसके बाद 13 मई को राजस्थान, 15 मई को आंध्र प्रदेश और 17 मई को बिहार से मुकाबला होगा। सभी मुकाबले आरके आश्रम ग्राउंड नारायणपुर में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में झारखंड चैंपियनशिप में 33 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। झारखंड को ग्रुप ए में मेघालय, बिहार और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ रखा गया है। होटवार स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3री सीकोकई ऑल इंडिया ओपन कराटे में 27 स्वर्ण जीतकर झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं 14 स्वर्ण के साथ बंगाल दूसरे जबकि 11 स्वर्ण पदक के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा। सीकोकई कराटे इंटरनेशनल झारखंड के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता 8 स्वर्ण पदक के साथ इंडियन आर्मी की टीम चौथे स्थान पर रही। महिला वर्ग में झारखंड की साक्षी ओझा ने खिताब जीता चैंपियन रही। वहीं पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब इंडियन आर्मी के मोहन को दिया गया। अनुशासित टीम का खिताब पूर्वी सिंहभूम की टीम को मिला। इंटर मिलान ने परमा को 2-0 से हराकर 3 दौर के मैच शेष रहते ही इटालियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया। इंटर मिलान को ट्रॉफी हासिल करने के लिए केवल 1 ड्रॉ की जरूरत थी। उसने परमा पर जीत से 2025 के चैंपियन और दूसरे स्थान पर कापीज नेपोली पर 12 अंकों की अजय बढ़त बना ली। यह इंटर मिलान का 21वां सीरी ए खिताब है। वह सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में यूवेंट्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंटर मिलान की तरफ से पहला गोल पहले हाफ में मार्कस थुरम ने किया, जबकि 37वर्षीय हेनरिक मकीतायान ने 80वें मिनट में दूसरा गोल दागा। इस सत्र में 2 ट्रॉफियां जीतने की दौड़ में शामिल इंटर मिलान 10 दिनों में इटालियन कप के फाइनल के लाजियो का सामना करेगा। क्रिश्चियन च्यू के मार्गदर्शन में टीम ने इस पूरे सीजन में आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया है। पार्मा के खिलाफ जीत दर्ज करते ही टीम ने अंक तालिका में इतनी बढ़त बना ली कि अब उन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये तो थे खेल समाचार दोस्तों। अब इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण। इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्रीड़ा जगत, प्रस्तुति स्वर अमित अखोरी का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण की।

0: ज्वार रांची कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कृति
1: और मैं विनोद।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार। जीवन की सुंदरता का असली महत्व यह है कि यह दूसरों के लिए कितना मूल्य रखती है। दूसरों की मदद करने में बिताया गया जीवन एकांत में बिताए गए जीवन से काफी अधिक मूल्यवान होता है। जीवन की सच्ची सुंदरता का महत्व इस बात पर निहित होता है कि वह दूसरों की देखभाल और मदद के लिए किस प्रकार खर्च किया जाता है।
1: प्रेम का बिखराव जीवन में दूसरों के लिए जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सुंदर होगा। जीवन एक उस खड़े पेड़ की तरह है जो प्रकृति के तत्वों पर पक्षियों और राहगीरों का सामना करता है और यह एक अकेले रह रहे आदमी की उपेक्षा अधिक सुंदर होता है।
0: बिल्कुल, और हर एक जीवन महत्वपूर्ण है उससे, और यह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रजा

0: जाति, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, इस दुनिया में अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और सभी एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
1: भले ही वो चाहे एक छोटी प्रजाति की हो और इस ग्रह से लुप्त हो गई हो, लेकिन यह दूसरे जीवों की को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए हम सभी के जीवन के लिए यही हित में है कि हम सभी जीवन प्रजाति के रूपों को महत्व दें और ग्रह के प्रत्येक जीवों को भी बराबर महत्व दें और उसकी रक्षा करें।

0: अब आगे बढ़ते हैं इतिहास की ओर और हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो 1459 में आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना हुई और 1689 में आज ही के दिन इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाया।
1: 1925 में आज के ही दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने। आज ही के दिन 1965 में इसराइल और पश्चिम जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया।
0: और 1999 में आज ही के दिन रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिस कार्यवाह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए।

0: अब आगे पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और आपको बता दें कि आज ही के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1945 में भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण का जन्म हुआ था और 1895 में आज ही के दिन जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, जो आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक थे।
1: और आज के ही दिन 1954 में के पलानी स्वामी का जन्म हुआ, जो राजनीतिज्ञ एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री थे। शिखा पांडे का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1989 में, जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

0: अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास में आपको बता दें कि आज ही के दिन 1993 में शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रगतिशील कवि, लेखक और चित्रकार थे।
1: उन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलनों से जुड़े थे। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना और बिंब विधान की गहरी झलक मिलती है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची, और हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए समर्पित है।
6: और अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य प्रणाली में नर्सों की

संस्कृति और अब मौसम की बात तुम देख रही हो कि इधर पिछले कम से कम हम एक सप्ताह की बात कर सकते हैं कि दिन में धूप होती है और फिर शाम होते होते बादल मंडराने लगती है। हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश भी अगर हम प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में हुई है और राजधानी रांची में भी हुई है। तो झारखंड में अगर मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 17 मई तक यह जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सुबह के समय उमस और गर्मी महसूस पूर्ववत होती रहेगी, जबकि दोपहर बाद आंधी मेघ गर्जन और बारिश का दौर

0: शुरू हो सकता है, जैसा कि अभी जारी भी है। 12 मई को यानी कि आज की बात करें तो रांची सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट इस बाबत जारी किया गया है
1: और इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई को यानी कि कल की बात हम कर रहे हैं, राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। 14 मई और 15 मई को भी अधिकांश जिलों में दोपहर बाद मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 15 मई को पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।
1: और मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश और हिमालय क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की ओर सक्रिय है। इस वजह से झारखंड में लगातार मौसम अस्थिर बना हुआ है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: பழமை கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: और कृति अब बात सैर सपाटे की, जैसा कि हर दिन हम अपने आवाज़ की दुनिया को दोस्तों को एक नई जगह से परिचय करवाते हैं कि सैर सपाटे के लिए अब अगर अभी की बात करें तो कौन सी मुफीद जगह है, वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ क्या रहनी क्या व्यवस्था है, वहाँ का खास व्यंजन क्या है, तो आज कहाँ ले चलना है, बढ़े आगे हम.
2: तो आज हम हमारे श्रोताओं को मनाली घूमने ले जा रहे हैं. और आप सभी को बता दें कि मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है.
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शहर है. कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है. समुद्र तल से अगर हम बात करें तो 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली ब्यास नदी के किनारे यह बसा है.
2: और गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं. सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है.
1: आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं.
2: और यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छन कर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है. पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा जाता है. कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, जो मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य को पुनर्रचना किया.
1: तो अब आपको बताते हैं कि आप मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. तो दोस्तों, आप जा सकते हैं हिडिम्बा मंदिर. यह समुद्र तल से 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसे ढोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.
2: आप मणिकर्ण भी जा सकते हैं. यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. और यहाँ का आप पानी झरना भी देख सकते हैं. कहा जाता है कि पार्वती माँ के कर्णफूल यहाँ खो गए थे, उसके बाद ही इस झरना का जल गर्म हो गया है.
1: मनाली में बहुत सी रोमांचक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं. ये जगह वैकेशन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है.

0: और अब बातें कुछ लोक कलाओं की। हम बात करेंगे कलमकारी की, जो कि भारत की प्रमुख लोक कलाओं में एक है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापे बनाई जाती है।
1: और कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है।
0: सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबा कर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध माड़ के घोल में डुबाया जाता है।
1: बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधे, पत्तियों, पेड़ों की छाल, तनों आदि का उपयोग किया जाता है।
0: भारत में कलमकारी के दो रूप प्रधान रूप से विकसित हुए हैं, वे हैं मछिलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकला हस्ती कलमकारी।

0: और कृति, अब चलते चलते कुछ सामान्य सी बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो खान पान में सावधानी बरतने की बात तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, और
1: हाँ
0: चाहे वो योगाचार्य की बात हो या किन्हीं की बात हो, संतुलन बहुत ज़रूरी है खान पीन में। तो अगर हल्का और ताज़ा भोजन अगर हम करते हैं तो बाहर का तला भुना या खुला खाना खाने से बचें, घर का बना हल्का और ताज़ा खाना ही खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर का सेवन करें। इससे जो विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर की, उसकी पूर्ति हो जाती है।
1: हाँ, और जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम कितना बदल रहा है, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो ऐसे मिश्रित मौसम में बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो संक्रमण, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
0: बिल्कुल।
1: तो अब वक्त हो चुका है हमारे श्रोताओं से विदा लेने का।
0: कहते हैं नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार,
1: जुहार।
0: और सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और पहली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मनी कपूरी, लक्षनपुर से हैं विश्वनाथ साहू और पिपरिया से है दुर्गा राम साहू। इन लोगों ने फरमाइश की है यस बॉस फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Cena.
1: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है सरगुजा मेन पार्ट से और इसे भेजा है सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा ने। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम, आसमा और अकरम। इन लोगों ने फरमाइश की है तेरे नाम फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हरे भरे पेड़ों से सजता है संसार, स्वच्छ हवा से महकता है हर परिवार,
1: प्रकृति से जुड़कर ही जीवन खिलता है, हरित जीवन शैली से भविष्य संवरता है।
0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत सफर में हाजिर हैं हम दो सखियां, मैं महजबीन
1: और मैं रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी स्नेहिल नमस्कार। आशा है आप सब बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ सुखद समय बिता रही होंगी। और फिलहाल आप सुन रही हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जहां बात होती है घर, समाज और जीवन से जुड़े उन विषयों पर जो हम सभी के भविष्य को सुंदर बनाते हैं। क्यों मैं जमीन?
0: हाँ बहनों, हर सुबह की ताजी हवा, बारिश की बूंदें, पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से सब जिस तरह से प्रकृति की वो अनमोल उपहार हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, संतुलित रखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मैं जबी। जीवन की असली सुंदरता केवल बड़े घरों, चमकती रोशनियों या आधुनिक सुविधाओं में नहीं होती बहनों, बल्कि उस शुद्ध हवा में होती है जिसे हम खुलकर सांस ले सके।
0: उस ठंडी छांव में होती है जहां मन को सुकून मिले, और उस हरियाली में होती है जो हर धरती को जीवंत बनाए रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
0: बहनों। सुबह सुबह जब पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहाती है, हल्की हवा चेहरे को छूती हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को ताजगी देती है, तब एहसास होता है कि प्रकृति ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो शक्ति है उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे लिए है, और हमें इससे जो फायदे हैं वो उठाने और उनकी जो हिफाजत है वो भी हमें करनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महजबीन। प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है बहनों, लेकिन बदलती जीवन शैली में हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज सुविधाएं बढ़ रही है मगर पर्यावरण लगातार संकट में है। कहीं पानी की कमी तो कहीं बढ़ता प्रदूषण, कहीं मौसम का असंतुलन, और ये सब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय है अपनी आदतों को बदलने का।
0: जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही प्रकृति पर बड़ा असर डालती हैं। कभी प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, कभी पानी की बर्बादी, तो कभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये सब मिलकर हमारी धरती माँ की मुस्कान छीन रही है। और इसकी जिम्मेदारी हम पर ही है, यानी कि हमने इन्हें जिस तरह से काटा है, इनको हम इनका हम दोहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हम देखेंगे कि इसको अगर बचाएंगे तो ये भी हमें कहीं ना कहीं कदम उठाना है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें।
1: बिल्कुल, प्रकृति हमें हर दिन जीने का नया संदेश देती है बहनों, लेकिन अब समय है ये सोचने का कि जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिलता है उसे लौटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बहनों प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, करती भी है, लेकिन लालच नहीं।
0: और ये बहुत गहरी बात है बहनों, जब जब इंसान प्रकृति के करीब रहता है जीवन खुशहाल रहता है, और जब जब उससे दूर हुआ समस्याएं बढ़ती चली गई, तो क्यों ना प्रकृति के करीब रहा जाए, प्रकृति के साथ हरित जीवन शैली को अपनाया जाए।
1: हाँ बहनों, प्रकृति के साथ हरित जीवन शैली यानी ऐसी जीवन शैली जो हमारे जीवन को भी स्वस्थ बनाए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे।
0: हरित जीवन शैली सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हम कर सकते हैं, जैसे घर में पानी की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, रसोई में जो जैविक कचरे है उसे का खाद बनाना और अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना।
1: बिल्कुल, और यहाँ मैं कहना चाहूंगी महजबीन कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और विश्वास रखिए बहनों कि ये छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं, धरती को हरा भरा बना सकती है। घर को सुंदर और सहेज कर रखना तो हर महिला की खूबी होती है, लेकिन आज वक्त सिर्फ घर ही नहीं हमारी धरती को भी संवारने का है।
0: और हरित जीवन शैली कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। हमने जैसे कि उपाय में भी पहले बताया, ये आप कर सकती हैं, तो छोटी छोटी अच्छी आदतों का नाम है बिजली और पानी की बचत करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, कपड़ों या कागज़ का दोबारा उपयोग करना। ये बहुत ही मामूली बात है, यानी कि हम अगर कहें ना कि हम अपनी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसमें सुधार ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये मामूली तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और घर की महिलाएं इस बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं बहनों। रसोई से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक, जैसा कि महजबीन ने कहा, यदि हर घर में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील सोच विकसित हो जाए तो पूरा समाज हरियाली की ओर बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल बहनों, प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के सब कुछ दिया है और दे भी रही है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसे सुरक्षित रखें और उसका सम्मान करें और अपने जीवन को प्रकृति के करीब लाएं। और हाँ, लाना भी जरूरी है रानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और महिलाएं यदि ठान लें तो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि घर की हर छोटी आदत आने वाली पीढ़ियों की सोच बन जाती है। यदि बच्चे बचपन से ही प्रकृति से प्रेम ना सीखे तो आने वाला कल अधिक सुरक्षित और सुंदर भी हो सकता है।
0: हाँ बहनों, और अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए हम बहनों कि हम बूंद बूंद से ही सागर बनता है, जिसे ये तो बात हमने सुना है। अगर हर घर छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने लगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी और सुंदर हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा। प्रकृति धरती माँ हर मौसम में हमें कुछ न कुछ सिखाती है। बारिश सहेजना सिखाती है, पेड़ धैर्य सिखाते हैं और बहती नदियाँ निरंतर आगे बढ़ना। बस जरूरत है तो प्रकृति के इन संदेशों के साथ साथ हरित जीवन शैली को

0: अपनी जिंदगी में अपनाने की, एक ऐसी जीवन शैली जो सेहत, सुकून और पर्यावरण तीनों को साथ लेकर चलती है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई के अवसर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं स्मिता और इनसे बातचीत कर रही हैं रेडियो सखी महजबीन।
6: बहनों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी उपाय बताते हैं कि आप किस तरह से कहां से शुरुआत कर सकती हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप किस तरह से करियर बना सकती हैं। और बहुत सारी संभावनाएं हैं आजकल, जो असीमित है। अगर आप इस विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमने आज अपने मेहमान को आमंत्रित किया है जो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी। मिलिए आज के मेहमान से। आज की हमारी मेहमान है स्मिता, जो कि पेशे से उद्यमी है और अपना कारोबार करती हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए।
6: हमें और हमारी बहनों को सबसे पहले ये जानकारी दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में बुनियादी शुरुआत कैसे करें, क्या करें ताकि उन्हें एक जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बहुत असीमित माना गया है, तो कहां से शुरुआत कर सकती हैं?
7: आज के समय में अगर कहें तो दुनिया सभी के हाथों में है हमारे फोन के माध्यम से, और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस चीज को ज्यादा अच्छे से दर्शाता है क्योंकि सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के पहले हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हों तो हम क्या बना रहे हैं, क्या दे सकते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो, आज ही नहीं आने वाले समय में भी। और मार्केट ऑब्जर्वेशन, मार्केट के बारे में जानकारी कि आपका क्या प्रोडक्ट बिकता है, ज्यादा से ज्यादा हम क्वांटिटी मैटर करता है क्योंकि हम ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उसके लिए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने चुन लिया। लेकिन बेचना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये डिसाइड करना कि हम क्या बेचने वाले हैं। तो इसलिए मैं एक तो देखे, आप अगर समझें तो व्यवसाय करना या कोई स्टार्टअप शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है और उसके लिए बहुत आत्मविश्वास के साथ उसमें एंटर करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज शुरू किया और आज से ही पैसे आएंगे। अगर मैंने जब अपना पहला व्यवसाय किया था और एक महीने में एक सामान मैं बेच पाई थी, और वो खुशी मैं आज भी नहीं बयां कर सकती शब्दों में।

0: जी खुशी तो होती ही है क्योंकि आपने शुरुआत की और उसमें आपको कहीं ना कहीं एक एक इंसान भी, अगर एक आपके जो कस्टमर है वो भी मिल जाते तो वो भी बहुत ही मायने रखती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सही प्लेटफॉर्म का चुनाव में आप क्या कैसा सलाह देंगे कि किस तरह से
1: दो तरीका है,
0: शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है और सही चुनाव करना भी एक परेशानी होती है, तो आप इसे किस तरह से देखती हैं?
1: तो इसमें दो तरीका है। पहला कि वैसा प्लेटफॉर्म चुनने की कोशिश करें जिस जो ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचे, जिसकी रिच ज्यादा हो, और दूसरा कि हमें यह भी देखना है कि प्लेटफॉर्म वैसा हो जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी सही सही से निकल जाए। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहां पे उनका जो सिस्टम ऑफ सेलिंग होता है, मतलब मैंने मान लीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे सामान रखा, तो वो सामान रखने की प्रक्रिया जटिल ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी टेक्निकली एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है।
0: जी आपने सही कहा कि शुरुआत में तो सभी को दिक्कत होती है, और सीखने और संसाधनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जिससे कि शुरुआत उनकी अच्छी हो, यानी अगर वो शुरुआत कर रही हैं तो इसे आप किस तरह से समझाएंगी?
1: देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पैसे बाजार में लगाने से पहले अगर आप बाजार समझने के लिए पैसे खर्च करें तो वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ बेचना है तो उस सामान को बाजार में खरीदने वाले लोग कितने हैं, क्या प्रक्रिया है, और उसको बनाने में मुझे क्या खर्च आएगा और बेचने में मुझे क्या मिलेगा, इन चीजों को समझने के लिए पहले पहला खर्चा मार्केट स्टडी पर करना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी
1: जी
0: अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग इसलिए भी उदास हो जाते हैं कि इनको सही रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रहती है या उनकी पहुंच भी अगर कहें तो अच्छी नहीं रहती है, तो क्या आप उनको सलाह देंगी कि वो अपना धैर्य न खोए?
1: बिल्कुल, धैर्य बहुत जरूरी है। जैसा कि हो सकता है कि आपने जो बनाया हो उसको लोगों तक पहुंचने, लोगों को समझने में भी थोड़ा वक्त लगे, तो इसलिए धैर्य ना खोएं। हो सकता है एक महीने के बाद ही आपका काम सही से शुरू हो, लेकिन वो एक महीना जो आपने धैर्य रखा, धैर्य का फल मीठा होता है कहते हैं, इंतजार का फल मीठा होता है, तो धैर्य रखें। धैर्य किसी भी व्यवसाय में धैर्य भी बहुत आवश्यक कड़ी है।
0: आपने जो भी टिप्स दी मैम बहुत ही अच्छी जानकारी है और अच्छी बातें आपने बताई कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पहुंच में होती है, धैर्य रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में जो भी दिक्कत और परेशानी होती है उस पर आप अपने जो धैर्य उसे बिल्कुल भी ना छोड़े, उसे उस पर आप टिके रहे। चुनौतियां तो हर बिजनेस में होती है, जैसा आपने कहा कि चुनौती भी है, धैर्य भी रखना है, और यहाँ पे भी चुनौती का सामना करना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? यानी जिस तरह
1: की आपको जीवन ही चुनौती है
0: जी।
1: आप हर दिन जो जीवन जीते हैं, आप रात में सोते हैं तो सुबह उठेंगे, इस बात की क्या गारंटी होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही आज का दिन बुरा गया, अगर व्यवसाय में पहला दिन बुरा गया तो अगला दिन बुरा जाएगा, इस ये कहाँ लिखा हुआ है? तो हर वक्त उम्मीद भी बहुत जरूरी चीज है। हम उम्मीद करके चलें कि अगला दिन बेहतर होगा, आज से बेहतर कल होगा, और ये अपने आप को, मैंने शुरुआत में ही कहा कि व्यवसाय इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं और आप लोगों तक क्या लेके पहुंच रहे हैं। अगर वो क्लियर है तो लोग आप तक पहुंचेंगे ही, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो आप तक पहुंचेंगे। इसलिए धैर्य रखें, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करें, खुद पर भरोसा करें और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। विश्वास बहुत बड़ी चीज है।
0: तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अंत में आप क्या संदेश देंगी कि ये शुरुआत अच्छी हो और पेशेंस भी जरूरी है, और किस तरह से हम अगर कहें कि शुरुआत करने का जो जज्बा है आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की। और जिस तरह से आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो एक संकोच भी होता है और ये लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, इतने सारे बाजार में प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्या हम हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि जो भी शुरुआत करना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत अच्छी हो और वे आगे तक तरक्की करें।
1: मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप भरोसा रखें खुद पर, और दूसरा कि अपने प्रोडक्ट पर भी उतना ही भरोसा रखें। तीसरी बात कि माउथ पब्लिसिटी, आप लोगों को बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने परिचितों को बताएं, और भी जो भी तरीका है आप हर तरीके से लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत जरूरी होती है। आप भी जानती हैं आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है कहते हैं, तो पब्लिसिटी पे भी ध्यान देना है। प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, और अगर आपने प्रोडक्ट सही दिया है तो लोग एक बार तो लेंगे ही और बार बार भी आपके पास लेने आएंगे।
0: जी, आपने हमारी जो गृह लक्ष्मी महिलाएं हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो महिलाएं घर संभाल रही हैं और कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। मैम आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कमाई के अवसर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी स्मिता, और इनसे बातचीत कर रही थी रेडियो सखी महजबीन।
3: बहनों, हमने आपको जानकारी दी और बहुत सारी बातें की। अब समय है एक प्यारे से खूबसूरत से गीत का। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: बहनों, सुकून तो बिल्कुल हमें जब होना है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे वायु प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव से बचने के। बहनों, अपने जो किस तरह से महसूस भी किया होगा कि सुबह की हवा अब उतनी ताज़ी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। खिड़की खोलते ही जो ठंडी साफ हवा चेहरे को छूती थी, उसकी जगह अब कहीं ना कहीं धुआं और धूल सा महसूस होने लगा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो वायु प्रदूषण है, और इसका मतलब है कि हवा में धूल धुआं और हानिकारक गैसों का मिल जाना, ये हमारी सेहत के लिए, सभी के लिए नुकसानदेह है।
1: बिल्कुल सही कहा मैज़बीन। जहाँ पहले सुबह की हवा में एक अलग ही मिठास होती थी, पेड़ों से आती ठंडी हवा जैसे पूरे दिन को सुकून दे जाती थी, लेकिन आज तेज रफ्तार जीवन और बढ़ते प्रदूषण ने उस स्वच्छ हवा को धीरे धीरे धुएं और धूल में बदल दिया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, है ना?
0: लगातार प्रदूषित हवा में रहने से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। बहनों, छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये समस्या आज बहुत आम हो गई है, लेकिन ये भी बहुत गंभीर मानी गई है। सड़क पर दौड़ते वाहन, फैक्ट्रियों का धुआं, कचरा जलना, पेड़ की अंधाधुंध कटाई, ये सब मिलकर हवा को खराब कर रहे हैं और इस तरफ हमें जागरूक होने की जरूरत है।
1: बिल्कुल। और क्योंकि साफ हवा सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन, कहें तो स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शर्त है बहनों। और बहनों, इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। अब अपनी सखी रानी,
0: और महज़बीन को दे इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी
2: तो इस सप्ताह

0: हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
0: लेकिन अजीत जी हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
0: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है
0: जी। और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी, इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
0: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
0: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
1: जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: हाँ, चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: जी जी।
4: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज

0: बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी,
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुँच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि

0: अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

0: विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर

0: एका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance, NDA, returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is their top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday.

0: transfer of land to the Border Security Force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people not to buy gold. President Draupadi Murmu today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. These prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organisations. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points to 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द की गई है। इस मामले की जांच के लिए NTA सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज CBI को सौंपेगी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। खान विभाग ने बालू खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी की है। नई नियमावली में लीज भुगतान प्रणाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। नए प्रारूप के अनुसार लीज अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से होगी। इसके अंतर्गत लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। इससे राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष राजस्व मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
3: इस राज्य में अधिकांश लोग मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो अंगिका बोलते हैं। पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है। सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
2: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।
4: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% से 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई

0: आंदोलन तो करना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो सदन में।
1: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा, वर्तमान जेटेट परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
2: ये अबुआ सरकार और आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरा संताल परगना डेमोग्राफी बदल रहा है, उसमें बोकारो भी हो चुका। अबुआ सरकार में आदिवासी का जमीन है सुरक्षित नहीं है, ना मां बहन का सुरक्षित।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पेशा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पोलिंग पर बल दिया है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, ATM कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलार चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलार आत्मरक्षा एकाग्र

0: क्षमता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पिंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

0: भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पे संपर्क करें, 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें, 9863 47 5217।
1: आप सुन रहे हैं उपसाज्र संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं।

0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के

0: आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम को शुरू करते हैं ट्रिपल आर फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है विशाल मिश्रा और बेनी दयाल ने, शब्दबद्ध किया है रिया मुखर्जी ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

0: बद किया है इरशाद कामिल ने और संगीत भी दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, मंदा हो तो

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Szena.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनिए वीर ज़ारा फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अब आप सुनिए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन ने। शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची में बिजली पानी के गंभीर संकट को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प हर घर में नल जल जीवन मिशन, उसको फेल करने के लिए सारी ताकत इस सरकार ने लगा दी। मतलब जनता से पानी की दूरी बनी रहे। कहते हैं राजधानी में बिजली सरप्लस है, कहाँ सरप्लस है? 8-8 घंटे लोड शेडिंग है, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली रहती नहीं। लॉडर पूरी तरह ध्वस्त है, एकदम साफ। ये सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म पे विश्वास करती है, जनता से कोई लेना देना नहीं है।
1: राजधानी रांची के बाद दुमका में भी बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने जनाक्रोश रैली और धरना दिया। पूर्व मंत्री राज पलिवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद और विधायक देवेंद्र कुंवर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन कर कामकाज ठप किया जाएगा। उधर लोहरदगा में भी भाजपा ने विधायक शशिभूषण मेहता और जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त ने राज्यपाल को राज्य की विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति से अवगत कराया। दोनों के बीच राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा करते हुए इसका नाम जल्द झारखंड आई बैंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, भूमि विवाद सुलझाने और सीएसआर फंड से आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को कहा, ताकि इसे राज्य का उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र बनाया जा सके। गिरिडीह पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने इस विशेष स्कूटी दस्ते को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह दस्ता मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के पास गश्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल 112 पर संपर्क कर सकती हैं।
3: महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत गिरिडीह में की जा रही है और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग, जहां भी महिला कॉलेज है, जहां पे की कुछ

0: टेस्टिंग सेंटर से, तो उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो। हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं, डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप संपर्क करें।
1: रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से रविवार से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे का शव बरामद हो गया है। बच्ची का शव गाड़ी गांव इलाके के एक बड़े नाले से मिला है। लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी थी और सुराग देने वाले को 50,000 रूपये इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह जांच कर रही है कि मामला महज हादसा है या कोई साजिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मैं हूँ कृति पौराने। प्रस्तुत है नॉन स्टॉप अंताक्षरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अंताक्षरी का खेल शुरू होता है म अक्षर से, तो आइए शुरू करते हैं अंताक्षरी और आपको सुनवाते हैं म अक्षर से ये गाना।

0: अंताक्षरी का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती को